एक न चेत समूढ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा।

पई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो। आप हाथ दै

सुनहु संतहु शब्द तरहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अन हद वाजे आनंद सुनो।

0: ते तू ठाकुर तुम
1: पैर दास जियो पिंड सब तेरी तुम मात पिता हम बारक तुमरी कृपा मैं सूह कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते सगल समग्री तुमरे सूतरम

गया जाप जाय नदरी कर्म पवे निशान कच पकाइयो थे पाए नानक गया जप जाए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग साध संगत जी, आप जी वडभागी हो, संध्या दे दीवान दियां हाजरियां पर दें पंथ प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनी हजूरी रागी जथे पासों गुरबाणी दा रस पिन्ना शब्द कीर्तन आप जी ने सरवन कीता। चल रही गुरु नानक सचे पातशाह दी उचारण कीती प्रमुख बाणी जपजी साहिब दी लड़ीवार विचार विचों जो पाक पवित्र पावन बचना दा पाठ आप जी ने सरवन कीता। ए जपजी साहिब दी गुरु प्यारियो चौतीवी पौड़ी है। इस पौड़ी अंदर गुरु नानक सचे पातशाह जो आत्मक ज्ञान आत्मक जीवन दी सोझी बख्शिश करदे हन, आओ कुछ समय लई सारे मिलके इन पावन पवित्र बचना दी विचार करिए और जानिए कि गुरुदेव असानू की आत्मक ज्ञान बख्शिश करदे हन। राती रुती थिती वार पहले बचन अंदर गुरु नानक सचे पातशाह सारे लफज बहु बचन वर्त देने। राती रातां जिवें दिन है, दिन ते सर पर पौसी रात, जे रात है ते दिन आ जाना, जे दिन है ते दिन तो बाद रात आउंदी। ए दिन ते रात

इस बिन अवर ना कोई राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां भर रही गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो। सतगुरु जी रहमत करन, आप सबना जीआं दीआं हाजरियां दर प्रवान करदे होए सतगुरु जी इसे तरह अपने पावन चरणां दे नाल जोड़ के इस जीवन नूं सफलियां कर देण। अज सतगुरु जी ने पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके जो हुक्मनामे की दात सानूं सारिआं नूं बख्शिश कीती है, राग सूही दे विच तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की पावन रसना तों उचारण कीता होया ये पावन शब्द, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन अंग 769 और 770 के उत्ते सुभायमान है जी। सतगुरु जी रहमत करन, इन्हां पावन हुक्मां अनुसार सानू सभना नू जीवन जाच बख्शिश करन, ता जो सभना दा लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो जावे। हुण सतगुरु जी रहमत करन, सब तो पहला श्री सुखमणी साहिब जी के संपूर्ण पाठ होणगे, उस तो उपरंत नितने दियां पंजां बाणियां दे पाठ होणगे। गुरु महाराज एकाग्रता सहित भय पावनी सदका गुरु की बाणी दे जाप करन दे बल बुद्धि समत बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आदगुर ए नमै, जुगादगुर ए नमै, सतगुर ए नमै, श्री गुरुदेव नमै। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कलेस तन माहि मिटावौ। सिमरौ जस बिसुम्बर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कंखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बेगन न लागै।

प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कह सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कह सिमरन सब किस सूझै, प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कह सिमरन पूरन आशा, प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमुहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अबेनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सूख बिहावै, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कह सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जान सरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तहारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सोत मीतना पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महापायान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरा चलै, जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करूरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जिहे मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनक बिघन जय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जपहो मन रंग, नानक पाइयै साधकै संग, जेह मार्ग के गने जाहि न कूसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जिह पैंडाए महान गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंत तेरा को ना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जह महा पयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहा त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बिकै, हर का नाम जन को मुगत जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै ना भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछु नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओठ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जाने, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर

ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਐ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੜੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨ ਪੂਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨਿਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਾਉ ਖੰਡ ਬ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀ ਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ਼ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਭੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮ ਸਰਕਸ਼ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਊਪ ਭਿਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਨਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੈ ਸ਼ੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟਾਇਆ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪੋਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੂਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰਤਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹੇ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰੇ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਿਸ ਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਭਾਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਰਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸ ਹੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗਹਿ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
आद अंत जो रख नहार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगद अजान सदा सदा एहो भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै शोष जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तहब प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुआन अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे करै अथा जा कै अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो ओढ़ निभावे कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहिय तौ समझै भोरा कहा बिसन पद गावै गूंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पार भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै नचीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पित्र बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रो याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी सलूक देनहार प्रभ छोड़ कह लाग है आन सुआए नानक कहू न सी जाई बिन नावै पत जाए अष्टपति दस वस्तु ले पाछे पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हिर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिउ नाही चारा ता कहो कीजै सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहु मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान कश बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगै रखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसदे चौ गुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओह बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लप ठरहयो तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तान तान कुटंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुआद मिथ्या चरण पर बिकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध
बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। धन धन ते जन जिहे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गांड लावत। जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर भेख ना काहू पीन। अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिस कै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख करै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक ऊन जान चरण पराता। करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै। आपे आप करतन बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब काश जानै आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय, लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, नेमख नेमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहं मेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जेह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परम गत पावै। जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। जिहे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमर होती सरसना। जिहे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जिहे प्रसाद पाठ पटंबर हटावै, तिसह त्याग कत अवर लुभावै। जिहे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिहे प्रसाद तुझ सब को मानै, मुख ताको जस रसन बखानै। जिहे प्रसाद तेरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पत सेती घर जावै। जिहे प्रसाद आ रोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जिहे प्रसाद तेरा ऊला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जिहे प्रसाद तेरे सगल शिदर ठाकी, मन सरणे पर ठाकुर प्रभ ताकै। जिहे प्रसाद तुझ को न पहुचै, मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे। जिहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे। जिहे प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिहे प्रसाद असब हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहु न बिसारी। जिहे प्रसाद बाग मिलक तना, राख पुरोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत साध तिसै त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है, ईहा ऊहा नानक तेरी रखै। जिहे प्रसाद करहै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिहे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जिहे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप। जिहे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिहे प्रसाद तेरी पात्र है, गुर प्रसाद नानक जस का है। जिहे प्रसाद सुनहे करन नाद, जिहे प्रसाद पेखै बिसमाद। जिहे प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिहे प्रसाद सुख सहजे बसना। जिहे प्रसाद हस्त कर चलै, जिहे प्रसाद संपूर्ण फलै। जिहे प्रसाद परम गत पावै, जिहे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो, गुर प्रसाद नानक मन जागहो। जिहे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ कौ मूल न मन हो बिसार। जिहे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताकौ जाप। जिहे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसहि जान मन सदा हजूरे। जिहे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू तास्यों राच। जिहे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जाप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावहो तित लग है हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक आगम आगाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी
साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान, साध कै संग बुझे प्रभ नीरा, साध संग सब होतन बेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग आस थे तो मन पावै, साध कै संग माया ते भिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर, साध कै संग नाही कुमंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत हो तिने हाल, साध कै संग कलुखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिशुरत हर मिला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद ना जानना है, जेता सुन है तेता बख्याना है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, आवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सुख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौला कै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों वसुधा, को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार,
ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता ब्रह्म ज्ञानी कह होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दारस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजहे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधि आख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक पूर धारा जो अंतर नाम सर्वमय पेख भगवान नेमख नेमख ठाकुर नमस्कार नानक ऊ अपारस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब के जाने आपस को मंदा गुरुप्रसाद बिखिया पर हरय मन की वासना मन ते तरह इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचा है केवल भगत कीर्तन संग राचा है मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ है अवरह नाम जपावै नानक ऊ वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जाग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सूखम मैं जानै असथूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उर तारै पाशु प्रेत मुगद पात्र कौ तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दरगै प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं बेयोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख काटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो व्रताए साई जुगत ओ नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करन करावण जोग प्रभ पावै सोई फुन होग पसरे ओ आप होए अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अभिनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰੋਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੀ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਥੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨੇ ਸਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋ ਨੇ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਲ ਹੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੁਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੁਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋ ਜੰਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੁਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੁਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿੰਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ ਤਾਕਾਂਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸਾ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਤਹਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸੁਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨਾਵੈ ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई फोन थियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर करंग हसै, कबहू नेंद चेंद ब्योहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहू नृत करे बहु भांत, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बहै बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू ताट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन भरमै परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ पावै तिवै नचावै, ज्यो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू साध संगत ए पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए बिसराम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जोवनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावै, जन्म मरै भौ जोन प्रमावै, तन भूमिका जो करै गुमान, सो मूरख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुकत आगै सुख पावै, धनवंता होए कर गर्भावै, तृण समान कश संग न जावै, बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतरता का होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिनमै होए जाए पसमंत, किसै ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगै परवान, कोट कर्म करे हौ तारे, शरम पावै सगले बिरथारे, अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म निंद्रवै, हर दरगै कहो कैसी गावै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसै भलाई निकट न आवै, सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते काश होए, तब इस को सुख नाही कोए, जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता, जब तारै को बैरी मीत, तब लग ने चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हौ छूटै। सहस खटे लख को उठतावै, त्रिपत न आवै, माया पाछै पावै, अनेक भोग बिख्या की करै, नह त्रिपतावै, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कारण करावन करने हार, इसके हाथ कहा बीचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो केश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग, बूझै देखै करै बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरे ना बिनसै आवै ना जाए, नानक साध ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो अपन विस्थार, सब काश उसका उकरने हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, आपुने चलित आप करने हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन आपुने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कूट मधे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, आत सुंदर अपार अनूप,
निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखयाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपति संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुपै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मैं पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभा तेहीन, संत के हते कौ रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै, संतन के दुखन सर्प ज्यों न पाए, संत के दुखन त्रिगद ज्यों न किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाहे। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महातियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाउ, नानक संत पावै तन लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को आवर न रखन हार, नानक संत पावै तां लै उबार। संत का दुखी एयों बेल लाए, ज्यों जल बिहून मछुड़ी तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तेल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजै नासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिस त्यावो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना केल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे, बडभागी नानक जन से सलोक। तज हो सियानप सुरजनाओ सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिस कह दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारै रखै एक आप, मानुख कह किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले हे जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलाओ मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बट भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करहे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जनो ते सुखी,
ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਏਤ ਉਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਜੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਹਿ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇ ਲੱਡ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਫੂਲ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਲਖ ਅਭਿਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰਹਿ ਤਿਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਹ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਹੇ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੜ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀ ਆਕਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਾਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹੇ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੇ ਹਉ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਤਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸ ਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤੇ ਸਹਿ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਾਸ਼ੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਹੇ ਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਕੇ ਬਸੰਤੈ ਸੰਗਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗਹਿ ਸੋਏ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਐ ਤੇ ਹੋਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੁ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਤੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੇਸ਼, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨ ਰਾਉ। ਮਨ ਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਾਧ ਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ, ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਾਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸ੍ਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੂਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਜੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਕਰਣੇ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ, ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਕਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ, ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੂਝੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਬਬੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ।
ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवकी रखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तहार, नानक सो सेवक सास सास समार, अपने जन का पर्दा ढक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात्र रख है, ताकि गात में तो कोई ना लाख है, प्रभ के सेवक काओ को ना पहुचे, प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, पासुम कर लस्कर कूट लख है, जिसका शासन कढ़ते आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करत दृथे जात, मारे न रख है अवर न कोय, सर्ब जिया का रख है, सोए काहे सोच कर हेरे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एहो मन तन त्रपी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करह भगत आत्म कह चाए, प्रभ अपने सुराहे हे समाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक ना जानो, आठ पहर प्रभ बसै हजूरे, कहु नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओटले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, आवर सयानप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जाना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक, सत पुरख जिन जानिया, सत गुर तिस का नाऊ, तिस कै संग सिख उधर है, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै, गुर के ग्रह सेवक जोर है, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कश ना जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्बिन धान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कश परम, सह सियाण पलाया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे, सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गुर अख्याओ जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखय होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए, जे बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक, काहू बोल न पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होए, उस पुरख का नाही कदे बिनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास, आठ पैर हर का नाम ले, साच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया के संग न लेप, मन में रख हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तह तिनासे,
तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदे से, साधु के पूर्ण उपदेसे, भाओ चूका निर्भाओ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका सातिन कृपा तहरी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पियोही, कलातार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर दिन दूजा नाही को

अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो में नेरा, मिटय ज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उर तहार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बस तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। साच वापार करहो वापारी, दरगह निब है खेप तुम्हारी। ए काटे करखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाहे। तिसते दूर कहा को जाए, उबरै रखन हार त्याए। निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होते निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार।

वक्त न पायो का दिया जे लिखण ले कुरान थित वार ना जोगी जाने रुतमा हो ना कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव शालाई क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपो जाने अगै गया न सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस ठारह कहन कतिबा असलू एक धात लेखा हुए तां लिखिए लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां तैवा पवै समुंद न जानी है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन हो न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ जेवड ऊंचा हुए कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड़ाप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते

केते मूर्ख काही काहे, केते आदु भूख सदमार, ए पैदा तेरी दातार। बंद खलासी पा न हुए, हु राख न सके कोए, जे को खाए के आखण पाए, बुझाने जितिया मुखाए, आपे जाने आपे दे, या कैसे फेके के, जिसनु बख्शे शिवसा लाहा, नानक पातशाही पातशाहु, अमुल गुण मुल वापार, अमुल वापारी ए अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल ले जाहे, अमुल पाए अमुला सुमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो मुला क्या न जाय, आख आख रहे लिवलाय, आख वेद पाठ पुराण, आख पढ़े करे वख्यान, आख बरमे आख इंद, आख गोपी तै गोविंद, आख ईसर आख सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेव, किते आखे आखण पाही, किते कह कह उठ उठ जाहे, इते किते होर करे, ताख न सकह के जीवड़ पावे तिवड़।

साधु विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुर गा मच पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे श्री तुदनु गावे जू तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर गेते गावन से मैं चित नावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पीओ सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन पाई कार कर विखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पा झोली ध्यान की करह विभूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण घट घट वाजै नाथ।

सहभाग आदिष्ट सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ नानक।

अतीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंत हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं।

आलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अभा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरेक है, पुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, नंगे अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो योग योगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो वस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो योग योगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो कूप कूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानं सर्वं परनासी, अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा वृत करता, अदूर्द अर्धं अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु है अजू है, अदेश है अपेश है, पुजंग प्रयाचंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमस्त्वं नरनाथे, नमस्त्वं परमाते, नमस्त्वं अगंजे, नमस्त्वं अपंजे, नमस्त्वं अकाले, नमस्त्वं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोगे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे, समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट छन्त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुआल छन्त्व प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत जौनपुर कपार, सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिशाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेत, आद पुरखोदार मूरत जाओ नाद अशेत, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जतर ततर दिशा विशा हुए फैल अनुराग,

जात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चकर बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जी थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो सोयम भाव गढ़न पंचन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपेश अंग राग नरंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नाथ मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम भेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार सुन भंग उपमा नंगन पौ प्रकाश निश्चिन नाश आ जान बाहू साहन साहू राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंका लान काल अनपूतंग आबा अफंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अत्युत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य दंड बाढ़ चाचरी चंद्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिशय अधिशय अधरिशय कृशय भगवती छंद्व प्रसाद कथते के आ चिज देशय के आ भिज भेषय के आ गंज करमय के आ भंज भरमय के आ भिज लोकै के आ दित सुकै के अवधूत वरणय के विभूत करणय के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसुक वरणय के सर्व अपरणय के जगतंग कृति है के छत्रंग क्षत्रिय के बर्मंग स्वरूप है के अनपहु अनूप है के आधु अधेव है के आपु अपेव है के चित्रंग बहीन है के खे अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के फूल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण पुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राजक रही मैं कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य कि सर्वत्र राज्य कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं फहिम है कि अकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमीसल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाए की यकीन है अनिकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तुप राज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवुल अकाम है
निर्वाद स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाध रूप है, अनाथ स्वरूप है, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिवर्गं त्रिबाधे, अगंजे, अगाते, शुभं सर्वभागे, सुसर्वानुरागे, त्रिपुग

अनाद हैं, अनित्य हैं, सुनित्य हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपड़ छंत्व प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं, सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता, रसावल छंत्व प्रसाद, नमो नर्कनासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते, परमातं परमाते सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते, अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसाकुं सरीके अमितो अमिके, सदैवं प्रभाहे अजय है अजा है, भगवती छंत्व प्रसाद, कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है, हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है, कि कामल करीम है कि राजक रहीम है, कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है, गनीबुल कि राज है गरीबुल निवाज है, हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है, कलंकंग प्रनास है समस्तुल निवास है, अगंजुल गनी में रजाय करहीन है, समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है, कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है, के सर्वल भवन है हमिशुल रवन है, तमामुल तुमी जय समस्तुल अजीज है, परम परमी सह समस्तुल अदीस है, अदिशुल अलेख है हमिशुल अपीक है, जमीनुल जमा है हमिकुल इमा है, करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है, कि असलंग प्रकाश है कि मितो सुबास है, कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है, कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है, मद पार चंतव प्रसाद, मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम, हर बर अगंज हर नर पर पांजु, अनगन प्रणाम मुनमन सलाम, हर नर अखंड बरनर अमंड, अन पवन आस मुन मन प्रकाश, गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंश जीवांग आसन अपांग, उपमा पार गत मित उदार, जल थल अमंड दिशविश अपांड, जल थल महंत दिशविश पेयंत, अन पवन आस त्रितर तुरास, आजान बाहु एक सुदाहु, ओंकारात कथनी अनाद, कालखंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंश जिगात अज जिनाबात, अंचंज गात अनरंज बात, अंटुट भंडार अंडट अपारा, डीट धर्म अत टीट कर्म, अणब्रण अनंत दाता महंत, हर गोल मना छंत्व प्रसाद, करुणालय है हर काल्य है, कलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, त्रित के तरण है जग के करण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वंग पर है सर्वंकार है, सर्वपास्य है सर्वनाश्य है, करुणा कर है विश्वम पर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है कलखंडस है, परते पर है करुणा कर है, जपा जप है तपा तप है, अकृता कृत्य अमृता अमृत है, अमृता अमृत है करुणा कृत्य, अकृता कृत्य धरणी त्रित है, अमितेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत अमृता अमृत है, जपा कृत अमृता अमृत है, नर नायक है कलकायक है विश्वम है करुणालय है, नृप नायक है सर्वपायक है, पापंजन है अरगंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकुलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्म है सर्वात्म है, आत्म बस है जस के जस है, पुजंग प्रया चंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासं तामसं शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार लंके, नमो वासासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, कच्छरी छंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगांज अपांज अलख अपाक।

अकाल दयाल लेख भेख न मकाम गह अटा अनाथे परमाथे अजो नियमो नि नराग न रंगे न रूपे न रेखे कर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते।

अनेक कह मतेक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहया मेक न जान्यो, श्री सुबान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाट कह गयो तुहारु द्वार।

संत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तूटा

पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे, मंगे मुख दुआर।

जुग जुग फिर वटाइएगा नहीं बुझता है। सतजुर संतोख का धर्म ग्रथवाओ, त्रै तेरे चित्ते का जुर ग्रथवाओ, द्वापर तपिका

सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द विच सिंगारी मेरा प्रव साचा सद ही साचा जिने आपे आपे उपाया नानक सदा पिर

पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, एक दक्षिणा हौ तै पह मांगौ, देह आपना नाम रहाओ। पंच तस्कर धावत राखे, चूका मन अभिमान, दिष्ट बिकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक, कर प्राप्त पाती धान, दूध कर्म संतोख कियो, कर ऐसा मांगो दान। खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हार गुण नानक रवत रहे। प्रभाती महला पहला।

जाने जा उस ही माही समाए, तू है बाहु तेरी रजाए, जो किछ करे सोई पर हुए बा, अवर न करना जाए रहाओ। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई सुरती कै मार्ग चल कै, उल्टी नदर प्रगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी।

बोलो सच नाम करतार, फुन बहुड नया बनवार रहाओ। ऊंचा ते फुन नीच करत है,

आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझ है कोई, नाव प्रभात शब्द त्याई, छोड़ो दुनी परिता, प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारिया तिन जीता, प्रभाती महला पहला, मन माया मन ताया, मन पंखी आकाश, लस्कर शब्द निवारिया, तस्कर शब्द निवारिया, नगर उठा साबास, जा तू राख राख लहे, साबत हु वैरास, ऐसा नाम रतन निध मेरे, गुरमत देह लगो पग तेरे, रहाओ मन जोगी मन भोगिया, मन मूरख गावार, मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करतार, पंच मार सुख पाया, ऐसा ब्रह्म विचार, घट घट एक वक्त।

जात जन्म नह पूछिए सच कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसै मूठो अंधा गलफाही सिर मारे धंधा आसा आवै मनसा जाए पुरजी ताणी किच ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो न बूझै अंध न सूझै भोंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमे मिलै वडाई दिन दिन आवै तिल तिल छीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर न पावै जब लग दूजी राई अहनिस जिया देख संभालै सुख दुख पुरब कमाई कर्महीन सच भिखिया मांगै नानक मिलै वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया अधिक बकों तेरी लिव रहिया भूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदै मुझै प्यारा रहा जिस निंदै सोई बिद जाणै गुर कै सबदे दर निशाणै कारण नाम अंतर्गत जाणै जिसनु नदर करे सोई बिद जाणै।

गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाखिया पूरा पद हुए, नानक त्राप्यो तन सुख होए। प्रभाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, अवर न रंगन हारा, एहन सजिया देख संभाले, किस ही की सरकारा।

कहाओ। ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस घर सूर समाया, काल बिंदुस मनसा मन मारी, गुर प्रसाद प्रभ पाया। हाथ रस रंग चलू लहराती, दूजा रंग न कोई, नानक रसन रसाए राते, रव रहिया प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला, बारह में रावल खप जावह, चौछे में सन्यासी, जोगी कापड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी। शब्द रते पूरे बैरागी, औहट हस्त में भीखिया जाची, एक पाहे निवलागी। रहाओ ब्राह्मण वाद पड़े कर क्रिया, करनी कर्म कमा कराए, बिन बूझे किच सूझै नाही, मन मुख विछुड़ दुख पाए। शब्द मिले से सूचाचारी, साची दरगह माने, अन दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने। सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराचत काल नसे। प्रभाती महला पहला, संता की रेन साध जन संगत, हर कीरत तर तारी, कहा करे बपुरा जम डर पै, गुरमुख हृदय मुरारी। जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवै साध मना। रहाओ गुरु उपदेश साच सुख, जाको क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रतन पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है। चीने ज्ञान ध्यान धन साचो, एक शब्द लिव लावे, निरालंब निरहार ने केवल, निरपहुताड़ी लावे। सायर सप्त भरे जल निर्मल, उल्टी नाव तरावे, बाहर जातो ठाक रहावे, गुरमुख सहज समावे। सो गिरही सो दासु दासी, जिन गुरमुख आप पछाणिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साच शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा, चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमुख विरला कोई बूझे, सबदे रहा समाई, नाम रते सदा सुख पावे, सास रह लिवलाई। हर हर नाम जपो जन पाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, अन दिन हर रस रहा अघाई। रहाओ अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चित लाई। सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वडी वडियाई, अखुट भंडार भरे कदे टूट न आवे, सदा हर सेव हो पाई। आपे करता जिसनु देवे, तिस वसै मन आई, नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा, निर्गुण आरे को बख्श ले स्वामी, आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तिरंत न पाया, सब दे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटह बल जाई, तन मन अर्प तुदया, तन मन अर्पी तुदया गै राखो, सदा रहा सरनाई। रहाओ अपने भाणे विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वडियाई, पूरे गुरते भाणा जापै, अन दिन सहज समाई।
तेरे भाणे भगत जे तुद भावै आपे बख्श मिलाई। तेरे भाणे सदा सुख पाया गुरु तृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करहै सो होवै करते अवर न करना जाई। नानक नावै जीवड़ अवर न दाता गोपूरे गुर ते पाई। परभाती महला तीजा गुरमुख हर सा लाहिया जिन्ना तिन सलाहे हर जाता। विचो भरम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता। हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुदैसा लाही। गत मत तुझते हुई रहाओ गुरमुख सालाहन से साध पायन। मीठा अमृत सार सदा मीठा कदे न फीका गुर शब्दी विचार। जिन मीठा लाया सोई जाने तिस विटह बल जाई। शब्द सलाही सदा सुखदाता विच हो आप गवाई। सतगुर मेरा सदा है दाता जो इच्छे सो फल पाए। नानक नाम मिले वडियाई गुर शब्दी सच पाए। परभाती महला तीजा जो तेरी शरणाई हर जियो तिन तू राखण जोग। तुद जीवड़ मैं अवर न सूझै।

सहजे ही सुख होई। गुर कै शब्द कमल परगासिया, हौ मैं दुर्मत खोई। सबना मह एको सच वरतै, विरला बूझै कोई। गुरमति मन निर्मल हुआ, अमृत तत्व खानै। हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन मानै। सद बलिहारी गुरे अपने विटहो, जित आत्म राम पछानै। मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नदर करे ता सतगुरु मेले, सहजे सहज समाया। नानक नाम मिलै वडियाई, पूरै भाग त्याया। प्रभाती महला तीजा, आपे भांत बनाए बहुरंगी। शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया, कर वेखै करे कराए। सर्व जिया नो रिजक दिया, कली काल में रव्या राम। घट घट पूर रहया प्रभे को, गुरमुख प्रगट हर हर नाम। रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग, घट घट हर भरपूर रहया। नाम रतन तिना हिरदै प्रगटया, जो गुर सरणाई भज पया। इंद्री पंच पंचे वसियाणे, खिमा संतोख गुरमत पावै। सो धन धन हर जन वड पूरा, जो पै बैराग हर गुण गावै। गुर ते मुँह फेरे जे कोई, गुर का कहया न चित धरै। कर आचार बहु समको संचय, जो किछ खरै सो नरक परै। एको शब्द एको प्रभ वरतै, सब एक स्ते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख

मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहि रहाउ। अमृत नाम भोजन हर दे कोट मध्ये कोई विरला ले, जिसनु अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे बसाए, दुख अनेरा अंदर हो जाए।

अधार आपी दीवे सिरजनहार सच्चा मनाए अपना भाणा सोई भगत सुगड़ सुजाणा नानक तिसकै सतगुर बाणा प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन्मन नाम लगान अमृत रस पिया गुरु शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम वखान कित बिद क्यों पाई प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत मैं हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे भाग सत संगत पाई गुरु सतगुरु परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक कौ गुर कृपा धारी हर नाम दियो किन दान प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोलै सब रैन संभालै हर गाल हमरै प्रभ हम लोच लगाई हम करै प्रभु हर

कालु रहाउ साकत को दिन रैन अंधारी मोहि फाथे माया जालु खिन पल हर प्रभ रितैन वसियो ऋण बाधे बहु पित बालु सतसंगत मिल मत बुद्ध पाई हों छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख पौ जल डुब दे काड लेहु प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रसक रसीक गावत सुनत दो भय मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यों विच उड़वा।

काया नगर वस्यो घर मंदर जप सोभा गुरमुख करपा हलत फलत जन पए सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनभव हर हर हर लिव लागी हर उर धार्यो गुर निमख फा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख फा हर हर आप धर्यो हर जन मह जन नानक हर प्रभ इक फा प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दृढ़ायु हर हर हम मुए जीवे हर जपपा धन धन गुरु गुर सतगुर पूरा दिख डुबदे बाह दे कढबा जप मन राम नाम अरदंभा उपजंप उपाय न पाइए कतहू गुरपूर।

लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर धार्यो गुर हर बा हौ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने पुत कलत मोहि लुभगा तिन पग संत न सेवे कबहू ते मन मुख भूंबर भरबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जान हो हम परे हार तुम शरण बा ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी

आओ। सुन मन हर हर नाम कर त्यान, सुन मन हर कीरत अठसठ मजान, सुन मन गुरमुख पावह मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खूवै पाप कोटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवां विपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

गुण गाव है प्रभ दर्श प्यारु। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए चढ़ाई रहाओ। जो जन राता प्रभ कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जाने, पेख पेख मन मह हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जाके हृदय वसिया प्रभ सोए। सोई निचल आवे न जाए, अन दिन प्रभ के हर गुण गाए। ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोहि ठाकुर देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां, गुण गावत मन होए आनंद। आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे। तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे। सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीधा। तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुर है तराया, जिस पर साध मोह नहीं माया। हलत पलत जिन गुर है सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महा मुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वड्डे भाग पाइए हर सेव।

लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगन काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल। रहाओ ताप पाप बिनसे खिन पीतर, पहे कृपाल गुसाई, सास सास पार ब्रह्म अराधी, अपने सतगुरु कै बल जाई। अगम गोचर बेअंत स्वामी, ताकांत न पाइय, लाहा खाट हुई है तनवंता, अपना प्रभु त्याइय। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सबना से, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगह शोभावंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोख सब बिन सह, अज्ञान अंधेरा मन ते जाई। रहाओ जन्म मरण गुर राखे मीत, जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम स्यो लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेश, जो तिस पावे सो पल होश, तिस गुर का हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई। ऐसा गुर पाइए वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। आठ पैर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा, कर कृपा अपने प्रभ किए, हर का नाम जपन को दिए, आठ पैर गुण गाए गोविंद, तह बिन से उतरी सब चिंद, उबरे सतगुर चरणी लाग, जो गुर कहे सोई पल मीठा, मन की मत त्याग। रहाओ मन तन वसिया हर प्रभ सोई, कल कलेस किछ बिघन न हुई, सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग, चरण कमल स्यो लागो प्यार, बिन से काम क्रोध अहंकार, प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर स्यो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगहय तोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड भागी पाइए। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत से सच साहा, हर की दरगह नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुर पूरा पाइए वडभागी, निर्मल पूरन रीत। रहाओ पाया लाभ वजी वाधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई, सफल जन्म जीवन परवान, गुर प्रसादी हर रंग मान, बिन से काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतरह पार। प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला, गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब ताका नसै, हर रंग राता मन राम गुण गावै, मुक्तो साधु धूरी नावै। रहाओ गुर प्रसादी उतरे पार, पाओ परम बिन से बेकार, मन तन अंतर बसे गुर चरना, निरपै साध परे हर सरना, अनद सहज रस सूख कनेरे, दुश्मन दुख न आवै नेरे, गुर पूरै अपने कर राखे, हर नाम जपत किल बिक सब लाथे, संत साजन सिख भए सुहेले, गुर पूरै प्रभ स्यों लै मेले, जन्म मरण दुख फाहा काटिया, कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया, जन्म मरण दुख लाहा काटिया, कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी।
ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब सान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला वड़ी वड्याई जा वड्डा नाओ वड़ी वड्याई जा सच ने आओ वड़ी वड्याई जा नेचल थाओ वड़ी वड्याई जाने आलाओ वड़ी वड्याई बुझे सब पाओ वड़ी वड्याई जा पुछना दात वड़ी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथने जाए कीता करना सरबत जाए महला दूजा ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्म करे विनाश इक ना भाणे कढ लए इक ना माया विच नवास ए भी आख ना जापी जै किसे आणे रास नानक गुरमुख जानिया जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाए के लिखनावे धर्म बहा लिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुण वख कढे जजमा लिया थाओ न भैन कूड़े आर मुकाले दो जिख चा लिया तेरे नाए रते सेजन गए हर गए सिठक गण वालिया लिखनामे धर्म बहा लिया श्लोक महला पहला बिस्माद नाद बिस्माद भेद बिस्माद जी बिस्माद भेद बिस्माद रूप बिस्माद रंग बिस्माद नांगे फिरे नंजांता बिस्मात पौनी बिस्मात पानी बिस्मात अग्नि के डैव डाणी बिस्मात धरती बिस्मात खाणी बिस्मात साध लगे पराणी बिस्मात संयोग बिस्मात विजोग बिस्मात भुख बिस्मात भोग बिस्मात सिफत बिस्मात सलाह बिस्मात उजड़ बिस्मात राह बिस्मात नेड़े बिस्मात दूर बिस्मात देखे हाजरा हजूर बेख बडन रहा बिस्मात नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सब आकार कुदरत वेद पुराण कतेवा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत वरिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी वे संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक खुबके अंदर वेखे बरते ताको ताप पौड़ी आपी ने भोग भोग कहे हो पसवण भौर सदाया वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया अगे करनी कीर्त बाचिए वो लेखा कर समझ आया थौ न हो भी पौंदी सुन सुनिए क्या रो आया मन अंधे जन्म गवाया श्लोक महला पहला पै विच पवन बहे सदवाओ पै विच चलै लख दरियाओ पै विच अगन कडे बेगार पै विच धरती दबी भार पै विच इंद फिरे सरपार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोहो करोड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बुद्ध सूरनाथ पै विच आडाणे आकाश पै विच जोत बहा बलसूर पै विच आवै जावै पूर सगले आपाओ लिखिया सरलेख नानक निरम पाओ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरपौ निरंकार।

और आद शरीर दर सफल मूर्त करन कारण जोग गुर रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना हो तवे योग मर चरनार बिंद उपास कल क्लेश मटंत सिमरन काठ जमदूत फास रहो सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछु न अपाओ कनु अनुग्रहो प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख पंजन सुख राय जह कलेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझबिन अवर न ठाओ कर कृपा पर ब्रह्म स्वामी जपी तवारा नाओ रहो सतगुर सेव लगे कर चरने बड़े भाग लिव लागी कमल प्रकाश भय साध संगे दुरमत बुद्ध त्यागी आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला आप तरे संगत सब उदरे बिनसे

जलसा तरन गगन मैं ना आई आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूर चंद ज्योत अपार। सर्व दर्श लोचन अवयंतर एका नजर त्रिपुण सार। पवन पाणी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार। सर्वे जा चेक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार। कोट तेतीस जात है प्रभ नायक देंदे टूट नाही भंडार। ऊंदे भांडे कुछ न समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचे रिद्ध सिद्ध जाच करे जयकार। जैसी प्यास होए बने अंतर तैसे जल देवे प्रकार। बड़े भाग गुर सेव अपना भेद नाही गुरुदेव मरार। ताको काल नाही जम जो न बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब और ना मांगू हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत फल मांगे हर जस दीजे कृपा तार। गुजरी महला पहला ऐसी जन्म मरे आवे फन जावे बिन गुर गत नहीं काई। गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत में तपाई। भाई रे राम नाम जित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहो। ऐ जी बहुते पेख करे पेख्या को के ते उदर भरण के ताई। बिन हर भक्त नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाई। ऐ जी काल सदा सिरी ऊपर ठांडे जन्म जन्म बैराई। सचे शब्द रते सेवचे सतगुर बुझ बुझाई। गुर निसर नाई जो न सके दूत न सके संताई। अवगत नाथ निरंजन राते निरपो से उस बुलाई। ऐ जी ओ नाम दरो नाम होले बुलावे सतगुर टेक टकाए। जो तिस पावे सोई करसी कीर्तन मिटिया जाई। ऐ जी पाक परे गुर सरन तुम्हारी मैं अवना दूजी पाई। अब तब एको एक पकारो वाद जुगाद सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझी सो बनाई। कर कृपा गुर गुर सदखाब होमे शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किछ रहे ना दी से जग में आया जाई। नानक नाम पदार्थ जे हृदय कंठ बनाई। गुजरी महला पहला ऐ जी ना हम उत्तम नीच न मध्यम। हर शरणागत हर के लोग नाम रते के बल बैरागी। सुयोग विजोग सत जोग पाई रे गुर कृपा ते भगत उठा कर की। सतगुर वाकर दे हर निर्मल ना जमका न जमकी। रहो हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योत सभावे सहज हरी। बिन हर नाम प्रथा जग जीवन हर बिन ने फल मेक करी। ऐजी खोटे ठौर नाही कर बाहर निंदे गतनी काई। रोस करे प्रभक्ष न मेटे नित चढ़े सवाई। ऐजी गुर की दात न मेटे कोई मेरे ठाकर आप दवाई। निंदे नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाई। ऐजी सरन परे प्रभक्ष मिलावे बिलब न अधुआर आई। आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेर मलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमत भ्रमण चुकाई। पारस पेट कंचन धात होई सत्संगत की बड़ियाई। हर जन निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुर पाई। पुनर्प जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई। तू बड पुरख अगमत रोवर हम पंखी तुझ माही। नानक नाम नरंजन दीजे जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। भगत प्रेम आराधन सच प्यास परम हितं। बे लाप बिल बेनंतियां सुख पाए चित हितं। जपन नाम हर सरनी संसार सागर तार। तन रम नाम कर करनी रहो ए मन मृत शुभ चिंतन। गुर शब्द हर रमण मत्त ज्ञान कल्याण धान। हर नाम मन रमण चल चित बित भ्रमंग भ्रमंग जो परम अगन हितिंग। तर नाम भगत दृढ़ मती गुर वाक शब्द रतिंग। परमात भ्रम न चूकी जन जन्म व्याप खपिंग। स्थान हर नह केवलिंग सतमति नाम तपिंग। ए जुग मैं हेत व्यापिंग दुख अधिक जन्म मरण। पर शरण सतगुर उभरे हर नाम रित रमण। गुरमत नह चल मन मनिंग सहज विचारिंग। सोमन निर्मल जित साज अंतर ज्ञान रतन सारंग। पै पाए भगत तर पवजर मना चित लाए हर चरणी। हर नाम हृदय पवित्र पावन ए शरीर तो सरणी। लव लोभ लहर निवारण।

सिद्धन में तेरी प्रभ सिद्धा कर्मन खजर कर्मा आज्ञा में तेरी प्रभ आया हुक्मन सिर हुक्मा यो बुलावे तो बोलो स्वामी कुदत कवण हमारी साध संग नानक सिखाया सो प्रभ की अत प्यारी गुजरी महल्ला पंजम अहंकार चौथा इक ओ अहंकार सतगुर प्रसार नाथ नर हर दीन बंद पतित पावन देव पै त्रासनाथ कृपार गुणित सबल स्वामी सेव हर गोपाल हर गुरु गोविंद चरण सरण दयाल के सवतार सब जग पम सिंध रहो काम क्रोध हरण मद मो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार तरनी तन पात राख परमानंद चलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर दुमंत छेद अम्बेद करुणा मैं चिंत मेट पुरख आनंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिए रजाद मोहन मिथ दुरंत आसा वासना बेकार रख धर्म परम बिदार मन ते उदर हर निरंकार सनाड आड़ पंडार हर निध होत जनाना चीर खल मुग्ध मूड कटाख सिरी दर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद परीत जी दया मया सर्वतर रमणिंग परम हंसारीद देत दर्शन सर्वन हर जड रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक उत पते तो उधार देख दर्शन सर्वन हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उधार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

परम जग चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरम वद अमृत तत्मयम नाद नोत जस मरणेन जन्म जरा।